0: Dagsin jinai tat panang jin dikrim sana za tsnga ji akash vani le ne chun dik tang tsnga to chi zo gya cha do kasa da akash vani delhi ne sngul la samaj prabhat yang destine morning news sana za
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। फोरमों को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
6: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
7: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या कर रहा हो?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

0: Dakhsing shen film lui tiktim senadat nga ji akashvani le ne shwen chik tangin nga tu chu tu chu shadu kasata fm go delhi tiktim senadat
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट। इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में

0: 200 planes for Boeing with a promise of 750 planes. This will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also. The engines approximately.
1: In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Nurizuddin and Gozay Faye in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया।
3: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग का समझौता किया है। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इस समझौते से भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी के साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
4: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री टॉम बेंडरसन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा महाराज और रानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
5: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो सही काम करने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान के रवैये की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान समझौतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा व्यवहार करता है जैसे बातचीत कभी हुई ही ना हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं। चीन से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हो गया है।
6: And that's General Electric also. The engines, approximately 400-450 engines. We had an amazing time. It's a very historic.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापार करने में आसानी और देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गोह से फेई से होगा। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामा को 21-12 21-13 से हराया। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 अकाने यामागुची से हार गईं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विदिटसन से हार गए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडारण सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. UAE pledges investments worth $5 billion in India. Both countries sign several agreements including strategic petroleum and gas reserves. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart in Hague. Several pacts expected to be signed in key areas including semiconductors and AI. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. India and the UAE have signed a series of landmark agreements covering strategic petroleum reserves, long-term LPG supply and defence cooperation. The pacts were inked following high-level talks between Prime Minister Narendra Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, held amid the ongoing West Asia conflict. The UAE has also pledged investments worth $5 billion in India. Prime Minister Modi reached UAE yesterday on the first leg of his five-nation tour. One of the pacts include strategic collaboration agreement signed between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company to strengthen India's energy security, including cooperation in petroleum reserves and possible collaboration on liquid natural gas and liquefied petroleum gas LPG storage facilities. The Ministry of External Affairs in a statement said the agreement will enhance UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels and set up strategic gas reserves in India. The two sides also signed a separate strategic collaboration pact on LPG, which is supposed to ensure long-term supply of the cooking fuel widely used in India. India and the UAE also signed a framework for a strategic defence partnership which focuses on defence industrial cooperation, technology sharing, innovation and regional security cooperation. Under the framework, the two countries are set to explore joint development of military hardware besides boosting cooperation in a number of other crucial areas. During their talks, Prime Minister Modi and President Zayed Al Nahyan also exchanged views on the West Asia crisis. In his remarks, Mr. Modi strongly condemned recent attacks on the UAE. He reaffirmed India's solidarity with the leadership and people of the Emirates. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour amid deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at the Amsterdam airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover at the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report.
8: During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties the King and the Queen. This visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, Prime Minister Modi will address the Indian communities and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the field of semiconductor chips and AI, where Netherlands stands as a global leader. From the trade perspective, Netherlands is India's key economic partner, one of the largest export destinations as well as investor in India. Both the countries have robust partnership and cooperations in the fields of water management, renewable energy, green hydrogen economy, agriculture technologies and health. This is Shushru Sharma for Akashvani from The Hague, Netherlands.
7: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission Ursula von der Leyen. On the fourth leg of his visit, Prime Minister Modi will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. He will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. The Prime Minister will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The Wellcome Collection, one of the UK's leading museums exploring the human experience, today announced a landmark commitment to return what is believed to be the largest collection of Jain manuscripts outside South Asia. The return of more than 2,000 manuscripts held at its London collection for over a century follows dialogue and collaboration with the Institute of Jainology here. The collection spans 15th century illustrated manuscripts to unique texts from the 19th century covering religion, literature, medicine and culture in Prakrit and Sanskrit, Gujarati, Rajasthani and early Hindi scripts. This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you top international news and updates from around the globe. Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington. We have a report.
9: U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott said the April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress after America hosted 2 days of highly productive talks between Israel and Lebanon, which concluded yesterday. In a social media post, Mr. Pigott said the U.S. State Department will reconvene the political track of negotiations on 2nd and 3rd of June. In addition, a security track will be launched at the Pentagon on 29th of this month with military delegations from both countries. He further said the U.S. hope these discussions will advance lasting peace between the two countries, full recognition of each other's sovereignty and territorial integrity, and establishing genuine security along their shared border. Meanwhile, the Israeli Air Force continued its attack on infrastructure linked to Hezbollah group in Lebanon. The Israeli Air Force said during the past week they struck more than 440 infrastructures of Hezbollah in various areas in southern Lebanon. Additionally, more than 220 militants linked to Hezbollah were also killed in the region. Chirag Jha for World News.
7: U.S. President Donald Trump has said that the Strait of Hormuz will be opened and that the United States will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. In an interview with a television channel, Mr. Trump defended America's actions amid the West Asia crisis, saying he is going to do what's right. U.S. President Donald Trump has said the United States and China concluded major trade deals during his visit to China, describing the outcomes as significant. Speaking to reporters aboard Air Force One while returning from China, Mr. Trump said China has agreed to purchase 200 Boeing aircrafts with the possibility of additional orders following talks with Chinese President Xi Jinping.
0: A lot of great trade deals, including over 200 planes from Boeing with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also. The engines, approximately 400, 450 engines. We had an amazing time. It's a very historic.
7: In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Noor Izzuddin and Go Ze Fie in the semifinals of the Thailand Open in Bangkok today. Earlier, the Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami 21-12, 21-13 in the quarterfinal clash yesterday. And now before we close, here are the highlights of the bulletin. UAE pledges investments worth $5 billion in India. Both countries sign several agreements, including strategic petroleum and gas reserves. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart in The Hague. Several pacts expected to be signed in key areas, including semiconductors and AI. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take in Malaysian duo in the semi-finals of the Thailand Open. And that concludes the Morning World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashwani.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स और मैं हूं आपके साथ भावना। दिल का मेल बॉक्स जिसमें आपके दिल की बात हम तक पहुंचती है मेल्स के थ्रू और व्हाट्सएप के जरिए। तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868868753। नंबर एक बार फिर 9868868753। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आप अपने संदेश हम तक पहुंचाइए और आपकी पसंद के गीत हम सब तक पहुंचाएंगे। और लीजिए दो मैसेजेस भी हमारे सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, इनका संदेश आया। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का भी संदेश हमारे पास आया है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन का संदेश हमारे पास आया है। और गाना सुनना चाहते हैं ये।

नॉर्थ प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा, आयशा जोआ, जैनब मरियम, इन सब का हमारे पास संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है। पूरी कोशिश रहेगी हमारी आपकी पसंद का गीत भी सुनवाएं हम। शम्सुल कमर राही है, शाहीन फातिमा है, अनु खान है, अदनान खान है, फैजान है, आबाद खान साहब है, इन सब का भी हमें संदेश मिला है। प्यार भरा आदाब इन्होंने मुझे कहा है, आपको भी प्यार भरा आदाब जनाब। इसके अलावा सुदर्शन मुखी जी हैं, हेल्दी सैटरडे गुड मॉर्निंग इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। अनीता मुखी हैं, सिमरन मुखी हैं, सुदर्शन मुखी हैं, शांति नगर सोनीपत से इनका संदेश हमें मिला है। और इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजी। इतनी सारी फरमाइशें आती हैं ना, मन करता है सारे गाने सुना दें, लेकिन हर गाने की ड्यूरेशन भी तो होती है ना, सब गाने सुनवाए नहीं जा सकते एक प्रोग्राम में। लेकिन आगे पीछे एक प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में सबकी फरमाइशें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश रहती है हमारी। ये कौन है? ये है गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, इन सबका संदेश भी हमारे पास आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा सा संदेश हमें भेजने के लिए। देव वर्मा जी हैं, प्रद्युम्न वर्मा हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफल सफर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आपको भी बधाइयां जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खतौली शहर से इनका संदेश है प्रद्युम्न वर्मा जी का। इसके अलावा हमारे पास ये है मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हमारे पास आया है। उत्तम नगर दिल्ली से हमारे पास संदेश आया है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का। और गाना सुनना चाहते हैं ये।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स। आपके बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं। अनिल मोहन है, उषा मोहन है, टिल्लू नायक है, कैथल हरियाणा से इनका संदेश है, साथ में मधु नायक भी है। उनका नाम लिखना भूल गए थे शायद, पर नीचे उनका भी नाम ऐड कर दिया इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इनका संदेश हमें मिला है और उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है एनी सॉन्ग। ठीक है जी, बहुत सारे सुमित्रा देवी जी हैं, देखिए सुमित्रा देवी हैं, सोनिया देवी हैं, आशा रानी हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से और इन्होंने राम राम जी लिखकर भेजा है। राम राम जी आपको भी जी। इसके अलावा लालगिरी जी हैं, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हैना, हर्षित खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा धर्मेंद्र छीपा है, कपिल छीपा है, ईशान छीपा है, पूजा परिहार है भोपालगढ़ राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है। बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, हम क्या सुनवा रहे हैं जी, ये तो आप फरमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अरे वाह क्या बात है, लखनऊ का नाम सुनकर ही बड़ी मतलब नजाकत नफासत जो है वो आ जाती है। अमन आफरीदी भी साथ में हैं और राधा नामदेव भी इनके साथ हैं और ये सब लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गांव नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

गुरमीत सिंह मीता जी हैं साउथ दिल्ली से, इनका संदेश हमारे पास आया है। साउथ दिल्ली में कहां जी, कितों, ये आपने नहीं लिख के भेजा और इन्होंने लिखा है खुशनुमा नमस्ते। अरे वाह, खुशनुमा नमस्ते तो पहली बार मिली है हमको। बहुत अच्छा लगता है जब आप छोटी छोटी बातों से एक तरह से जुड़ाव जो है वो बताते हैं, दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और भारत के अलग अलग कोनों में आप हमें सुन रहे हैं, अगर एक ग्राफ बनाए तो कैसा लगेगा, पूरा एक परिवार हमारा एक बना हुआ है, मतलब कितने सारे परिवार के लोग इस वक्त एक साथ हैं हम, है ना, जो जो भी सुन रहे हो सब इस प्रोग्राम में परिवार का हिस्सा बन गए ना। हमारे साथ परमजीत कौर जी जो है वो जुड़े हैं, दिलबाग सिंह है, दिलजोत सिंह है, हरप्रीत सिंह है और परमजीत कौर जी लिखती हैं पंजाबी बाग दिल्ली से। मैडम जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल आपको भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज मोहम्मद जी हैं, इनका संदेश हमें मिला है। इनके साथ गुलाम साबिर राही है, महराज जहां है, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमारे पास आया है। जॉन डिकेस्ट्रो हैं, रोजी डिकेस्ट्रो हैं, पर्ल डिकेस्ट्रो हैं, विलिस डिकेस्ट्रो हैं, जनकपुरी सहारनपुर से इनका संदेश हमें मिला है। और भारत भूषण जी हैं, ये अंजु श्रीवास्तव भी हैं, दिव्येंदु भूषण हैं, संस्कृति हैं, पौरुष हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से इनका संदेश हमें मिला है। देखिए ना, कोई बेंगलुरु से, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। नमस्कार, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अच्छा ये मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा अभिनंदन करने के लिए। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा हैं, बिमला अनेजा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें अपना संदेश भेजने के लिए। राजी शर्मा हैं, राजी शर्मा आदर्श नगर पंजाब से इनका हमें संदेश मिला है। राज शर्मा भी है, मीना शर्मा है, योगेश शर्मा है, निवान शर्मा है, सौरभ शर्मा है, शाइना शर्मा है और मैंडी शर्मा भी है इनके साथ में। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन्हें प्रोग्राम सुनते हुए और हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका संदेश पढ़ते हुए, आपका ईमेल पढ़ते हुए। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है मलियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का, और ये सब मिलकर गाना सुनना चाहते हैं ये।

अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि चलने का समय हो गया, लेकिन चलते चलते एक संदेश और पढ़ देते हैं। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा, दीपक श्याम कंवर और अनुश्री श्याम कुंवर का संदेश हमें मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें हमें लिखकर भेजने के लिए, अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए और सबको सुनवाने के लिए। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन इससे पहले अभी समय है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंदेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा, स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिला शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडर मौसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर और मैं हूं आपके साथ भावना। तस्वीर प्रोग्राम में हम हर बार आपको एक खूबसूरत जगह लेकर जाते हैं, वहां की रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज जहां हम जाने वाले हैं वो है हिमालय की तलहटी में बसा बहारों का शहर कालिम्पोंग।

अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं कलिम्पोंग की, तो शहर में कई पार्क्स हैं, और अगर बुजुर्ग यात्रियों के लिए आप कोई जगह यहाँ पर खास देख रहे हैं तो बहुत सारे पवित्र मंदिर भी हैं यहाँ पर। तीस्ता नदी के पूर्व में बसा खूबसूरत शहर कलिम्पोंग, जिसे कलिम्पोंग और कलिम्पोंग दोनों नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आध्यात्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं और खूबसूरत नजारे हैं। यहाँ की सर्वांगीण संस्कृति इसको एक शानदार पर्यटन स्थल बनाती है, बहुत ही खास है कलिम्पोंग। मंगलधाम मंदिर यहाँ का, यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना। तो कलिम्पोंग में मंगलधाम मंदिर घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। गुरुजी श्री मंगलदास जी को ये समर्पित मंदिर है, और यहाँ पर आपको जटिल नक्काशी देखने को मिलेगी और पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा शांत वातावरण और पहाड़ों के मनोरम दृश्य, जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में आएंगे, बाहर निकलेंगे, पहाड़ों का इतना खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि एक शांति, एक सुकून, वो एक माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है, आध्यात्म है, हम हैं, शांति है और हमारी दुआएं हैं जिन्हें हम अपने लिए, दूसरों के लिए मांग रहे हैं। और फिर वहां से कहीं और जाने का मन नहीं करता।

बाहें फैलाकर पूरी प्रकृति को अपनी बाहों में समेटने की इच्छा कभी की है आपने? कभी आपने हिमालय के मनमोहक नजारों को निहारने के लिए किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होने की इच्छा की है आपने? अगर की है ना, तो वो यहाँ कलिम्पोंग में पूरी हो सकती है। यहाँ डेलो पार्क है और डेलो पार्क में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चोटी है ऊपर पहाड़ी की, वहां पर खड़े होकर पूरा नजारा देख सकते हैं। घाटियां, नदियां, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। 360 डिग्री गोल गोल घूमकर चारों तरफ आप देख सकते हैं। पता है, पैराग्लाइडिंग या फिर घुड़सवारी ये भी आप यहां कर सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये पार्क आपको ट्रेकिंग का अवसर भी प्रदान करता है और पार्क के चारों ओर है ना विदेशी फूल खिले हुए हैं जो इस पार्क की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं यहाँ, मतलब आप इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके कि आप डेलो पार्क में आ गए हैं कलिम्पोंग के, और पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पूरा 360 डिग्री, यानी अगर आप जहाँ खड़े हैं वहां से गोल गोल घूम के देखें तो चारों तरफ आपको खूबसूरत घाटी, फूलों से भरी हुई आपको नदियां और बर्फ से ढकी हुई चोटियों वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और जब आप पार्क के अंदर पैराग्लाइडिंग और ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कैसा महसूस होता होगा, कैसा मौसम, कैसा समय होगा यहाँ का, उसे आप केवल अनुभव कर सकते हैं, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं बहुत अच्छे से।

सचमुच इतना खूबसूरत नजारा देखने के बाद अगर आपका दिल आप संभाल सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। कलिम्पोंग विज्ञान केंद्र भी है यहाँ पर, जहाँ आप जा सकते हैं। मनोरंजन और ज्ञानवर्धक दोनों तरह के अनुभव आप यहाँ ले सकते हैं। 2008 में इसे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसलिंग के अंतर्गत बनाया गया था और कलिम्पोंग में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 3D मूवी थिएटर है, विज्ञान वेधशाला है, और जो शोध करता है ना, मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको आप एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देख सकते हैं और कार्यशील मॉडल देख सकते हैं आप किस तरह से कार्य होता है। इंटरैक्टिव प्रदर्शनी होती हैं वहां पर, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रत्यक्ष प्रयोगों के माध्यम से जो विज्ञान की एक कहते हैं ना जिज्ञासा होती है, ये कैसे हो जाता है, ये ऐसे कैसे हो जाता है, वो आप यहाँ काफी हद तक पूरी कर सकते हैं। लेकिन अपने हाथ से कोई चीज छूनी नहीं है आपको, अपने हाथों को कष्ट मत दीजिए, आप बस जो कर रहे हैं उनको करते हुए देखिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वादियां, हसीन प्राकृतिक नजारे, कुछ ऐसा ही महसूस होता है कलिम्पोंग आकर। यहाँ का चांगी जलप्रपात, कल्पना कीजिए कि आप एक झरने के किनारे खड़े हैं जहां चारों ओर पानी के गिरने की आवाज आपके कानों में घुल रही है। आपको कैसा लगेगा? धुंध से ढकी पहाड़ियां और बीच में ये जलप्रपात, आपको कैसा लगेगा? बस ऐसा ही लगता है चांगी जलप्रपात को देखने से। कई दर्शनीय स्थलों से होकर गुजरने वाला रास्ता है जो हमें यहाँ पहुंचाता है, चांगी जलप्रपात कलिम्पोंग का।

इसके अलावा यहाँ का न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर दुर्लभ रेड पांडा, लाल पांडा भी आपको विचरण करते हुए घूमते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा काले भालू, सुस्त भालू, तेंदुए, जंगली सुअर, हिमालयी उड़ने वाली गिलहरी, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ट्रेकिंग और पक्षी को निहारना ये लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा लेपचा संग्रहालय है। लेपचा संग्रहालय में जो लेपचा समुदाय है वो सिक्किम, भूटान, कई उसमें ये जो लेपचा समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, तो उनका एक संग्रहालय है यहाँ पर कलिम्पोंग में। संग्रहालय में देहाती वस्तुएं हैं, उनकी उनकी खूबसूरती को बढ़ाने वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ के मूल निवासी जो लेपचा समुदाय के हैं उनका इतिहास आप जान सकते हैं, उनके वाद्य यंत्र, उनकी पांडुलिपियां, उनकी हस्तशिल्प वस्तुएं, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा गेडेन थारपा चोलिंग मठ भी है, विशाल बुद्ध प्रतिमा पहाड़ों के बीच में, ये एक अट्रैक्शन है इसको देखने का। और अगर आप लकी होंगे ना तो यहाँ पर आपको इस चोलिंग मठ में, गेडेन थारपा चोलिंग मठ में पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। मतलब इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर करने और देखने के लिए कि इंसान बस खो जाए, छोटा सा ब्रेक है, मशहूरी है, उसके बाद बातें कर रहे हैं हम कलिम्पोंग की ही।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बहुत ही खूबसूरत है कलिम्पोंग और यहाँ के नजारे। अगर आप यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं देख पाए ना, तो यहाँ का वन संग्रहालय भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3D लघु चित्र देखने को मिलेंगे, उनके बारे में यानी वन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप 3D पिक्चर्स देखते हैं ना, तो एक इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आता है उनके बारे में जानने का, और बड़े अच्छे से आप समझ पाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी किताबें होंगी जिनसे आप जान सकते हैं जो पारिस्थितिकी जीव हैं उनके बारे में और यहाँ के पर्यावरण के बारे में भी। और जो पूर्वी हिमालय की जीवंत वनस्पति है और जीव जंतु है उनकी झलक भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। डंबर चौक जो है ना, उसको महारानी चौक के नाम से भी जाना जाता था पहले। कलिम्पोंग में खरीदारी और बहुत सारे खाद्य पदार्थों के स्वाद चटकारे लेने का ये पॉइंट है, ये जगह है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जो लाने के लिए भी कि मतलब सबको गिफ्ट कर देंगे आके, पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को। इसके अलावा वहां पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसलिए लोग यहाँ पहुंचते जरूर हैं एक बार। दुर्पिनदारा हिल, ये बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य वाली जगह है। दो पहाड़ियों में से ये एक है जिन पर कलिम्पोंग शहर बसा हुआ है। देओला पहाड़ी दूसरी पहाड़ी है जो एक पहाड़ी श्रृंखला के माध्यम से दुर्पिनदारा से जुड़ी हुई है। और कल्पना कीजिए कि शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर आप खड़े हैं, तो वो यही जगह है। यहाँ से आप आसपास के मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। और जो इसके शिखर पर ना जांग धोक पालरी मठ ये भी है, तो लोग इसको भी जाकर देखने की इच्छा रखते हैं और देखते भी हैं। इतने खूबसूरत नजारे हैं ना कि आंखें बस चुंधिया जाती हैं। देखते देखते ऐसा लगता है जैसे सब चीजें अपनी आंखों में समा लें और आंखों को बंद करके फिर खोलें ना।

सेंट थेरेसा कैथोलिक चर्च, ये कलिम्पोंग का जो है बहुत ही खास चर्च है, और क्रिसमस के दौरान अगर आप यहाँ आते हैं ना तो रोशनी से चमचमाता जगमगाता दिखेगा सजावट चारों तरफ। पाइन व्यू नर्सरी, यहाँ पर 1500 विदेशी प्रजातियों सहित कई प्रकार के दुर्लभ कैक्टस आप देखने को मिलेंगे, और खास बात यह है कि यहाँ पर उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अमेरिका के भी कैक्टस आपको देखने को मिलेंगे, वहां से लाए हुए पौधे भी आप देख सकते हैं, और अगर आप कोई पौधा खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो संस्थापक होते हैं बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ पूरे नर्सरी का जो है वो दौरा करवाते हैं। दुर्पिन मठ भी बहुत खास है यहाँ का, इसके अलावा हाट बाजार है कलिम्पोंग का, वहां पर भी आप जरूर जाइए, वहां पर आपको जैविक उत्पाद बहुत सारे मिल जाएंगे, चुंबक खासकर मिलेंगी, वहां पर पारंपरिक हस्तशिल्प की चीजें मिल जाएंगी। गौरीपुर हाउस है, साहित्य और इतिहास दोनों की मिलीजुली परंपरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गौरीपुर हाउस जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर इसी घर में उन्होंने जमुना दिन, जक्ष माया, जरा थिकली जैसी कविताएं लिखी थी, और बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। बस अब आपको यहाँ आना होगा और देखना होगा खूबसूरत शहर कलिम्पोंग।

0: आपना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार 12:10 पर। घर आंगन प्रोग्राम होगा आकाशवाणी दिल्ली के FM कूल चैनल पर, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: Medium wave kilohertz chikstong apchung aksum yangna meters ngipkya gyachu gyapshi tang chuzur gutang FM megahertz gyatang chiktang chuzur chi kangaji akashwani lene shun chiktang in ngime chuzo chunge shadu kasata chunge stang petsupa filme lorek sanjas lapulen ina changme sanskunla kumar sanutang alkayak nikne makilari tuonari filme lo sanajat Lursoma Jatkan Rani Malik Tang Luyang Stiga Jatkan Anu Malik.

बढ़ता चल कदम से कदम मिलाता चल बढ़ता चल बढ़ाता चल कदम से कदम मिलाता चल हंसता चल हंसाता चल दुनिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: If you heard me earlier,
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
4: Modi, Modi, Modi, Modi, Modi, Modi.
3: The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. Indian Army Chief General Upin Dwivedi today said that Pakistan must stop harboring terrorists and operating against India. Speaking at Sena Samvad in New Delhi, Mr. Dwivedi said that if Pakistan continues these activities against India, then they will have to decide whether Pakistan wants to be a part of geography or history.
1: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
3: In a significant move to strengthen the law and order framework in Tripura, the Ministry of Home Affairs has officially sanctioned the raising of an additional inter-reserve battalion. The centre has sanctioned a one-time financial grant of 50 crore for its establishment and up to 30 crore for infrastructure development. This new unit will primarily focus on counter-insurgency operations and border guarding, with the centre retaining the authority to deploy these personnel anywhere across the country as needed. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim today after assuming office. He will attend the Statehood Day celebrations in Gangtok. During the event, the Vice President will also launch and lay foundation stone of multiple donor projects. President, the Prime Minister and Union Home Minister extended greetings to the people of Sikkim on their Statehood Day. The West Bengal government has ordered re-verification of all caste certificates issued since 2011. Officials say questions have been raised about the authenticity and validity of these documents over the past 14 years. Subdivisional officers and district-level officials will now scrutinize every certificate. If any are found to have been issued based on false information or irregularities, they will be cancelled under the law. A Delhi court has granted bail to businessman Robert Vadra in a money laundering case linked to a 2008 land deal in Gurugram's Shikohpur village. The matter has now been listed for further hearing on 10th of July. Vadra appeared before the Rouse Avenue court in compliance with the summons issued to him after the court had taken cognizance of the Enforcement Directorate's prosecution complaint filed under the Prevention of Money Laundering Act. The case relates to alleged irregularities in a land transaction involving 3.53 acres of land. In Andhra Pradesh, six women daily wage workers died after a speeding tipper lorry rammed into a group of labourers in Kakinada district this morning. The accident occurred near Kovuru Bridge in Kakinada rural mandal when the workers were crossing the road to reach a work site. Expressing shock over the incident, Deputy Chief Minister K. Pavan Kalyan said the state government would provide compensation of 4 lakh rupees to the families of the deceased. He also instructed officials to implement safety measures at employment guarantee work sites located near highways and busy roads. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Nuruddin and Ghosh Zefei in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans in Kolkata this evening at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलो हर्ट्ज और एफएम मेगाहर्ट्ज 101.1 पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फौज भाइयों के लिए प्रोग्राम।

जय हिंद। फौज भाई आज के इस समय के प्रोग्राम में सुनेंगे फिल्म गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज़ों में बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं शब्बीर अहमद और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

लीजिए, अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में बर्फी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीतकार प्रीतम।

अभी आपने क्यों की फिल्म का गीत सुना, कुणाल कांजावाला की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार थे समीर और हिमेश रेशमिया। लीजिए अब सुनिए जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज़ों में काबिल फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं नज़ीर फराज और संगीतकार राजेश रोशन।

फौज भाइयों के लिए इस प्रोग्राम में अगला गीत सुनिए, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज़ों में सिंग इज किंग फिल्म से। गीतकार हैं मयूर पुरी और संगीतकार प्रीतम।

लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह और चिन्मय श्री प्रदा की आवाज़ों में टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं अमित भट्टाचार्य और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

लीजिए, अब सुनिए उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मोहब्बतें फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

0: ngaje akashvani lene shunjiktain gimi chuso chektang skarma apchu chadu kasata tusso chapi gesting ne akashvani dilli ne skunla urdina nasul nisika midday news tang istang chongai ka dopahar samachar sanachar
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के अपने हमनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की दो सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नीदरलैंड्स के वजीर आजम रोबन जेटेन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज्जत मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। यह दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके जरिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आज़ादी तजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वजीर आजम के नीदरलैंड्स पहुंचने पर नीदरलैंड्स के वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बरादरी और नीदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों, खित्तों

0: और मज़ाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बरादरी के मेम्बरान ने रिवायती रक्स और मौसीकी पेश की। वज़ीर आज़म मोदी के पहुँचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फ़जा गूंज उठी। वज़ीर आज़म ने नेदरलैंड्स में भारतीय बरादरी के ज़रिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियां साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, ओडिशी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वज़ीर आज़म भारतीय बरादरी से खिताब करेंगे और नेदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत करेंगे। ये तकरीब वज़ीर आज़म के नेदरलैंड्स के दौरे का एक अहम हिस्सा होगी। इस तकरीब में भारत और नेदरलैंड्स के रिश्तों, भारतीय बरादरी के रोल और भारत की पूरी दुनिया में पहुंच पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय बरादरी और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से खिताब करेंगे। सेमीकंडक्टर, चिप्स और एआई जैसे शोबों में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है, जिसमें नीदरलैंड्स को आलमी रहनुमा की हैसियत हासिल है। तजारती नुक्ते नज़र से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम शराकत दार और बरामदाती व सरमायाकारी के बड़े मरकजों में से एक है। दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, ज़रई टेक्नोलॉजीज और सेहत के शोबों में मजबूत शराकत दारी रही है। सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फाले काजिम अल ज़ैदी को इराक़ के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक़ के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहैया कर रखा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। भारत के इदारों ने पहली बार 182 करोड़ रुपए मालियत की कैप्टागन मनशियात को कब्ज़े में लिया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने ये जानकारी दी और ये भी कहा कि सरकार ने भारत को मनशियात से पाक मुल्क बनाने का तहैया कर रखा है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मगरबी एशिया जाने वाली मनशियात को कब्ज़े में लेने और इस सिलसिले में गैर मुल्की शख्स की गिरफ्तारी इस बात की दरख्शां मिसाल है कि हम मुल्क में मनशियात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में एक ग्राम भी नशा आवर अशिया ना तो आने देगी और ना अपने इलाके से गुजरने देगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और मुल्क के कई दीगर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के दौरान तेज बारिश और आंधी में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने मुतासरा कुनबों को ताजियत पेश की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खराब मौसम से मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन मदद दे रही है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 से जारी किए गए जात पात से मुतालिक तमाम सर्टिफिकेट की फिर से तस्दीक का हुक्म दिया है। हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 14 बरस के दौरान जारी किए गए इन दस्तावेजात के जवाब और असलियत के बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे के दौरान दर्ज फेरी जातों, कबीलों और दीगर पसमानदा तबकों को जातों के बारे में लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से बहुत से सर्टिफिकेट द्वारे सरकार कैंप की तवसुत से तकसीम किए गए। सब डिविजनल अफसर और जिला सतह के एहलकार हर सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर ये साबित हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट गलत जानकारी या बेकायदगी से जारी किया गया है तो कानून के मुताबिक उसे मंसूख कर दिया जाएगा। हाल ही में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हजफ कर दिए गए हैं उन पर भी इस हिदायत का इतलाक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के नतज के ऐलान के बाद एक नोटिस जारी किया है जिसमें इम्तहानात के अमल में मुनसिफाना तौर तरीकों और शफाफियत की तस्दीक होती है। नोटिस में कहा गया है कि जो तलबा अपने नतज से मुतमिन नहीं हैं वो दो मरहलों वाले नजरसानी निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा ऑनलाइन अपने स्कैंड शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले

0: तलबा किसी भी फ़र्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाबात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा ज़िले में आज सुबह एक तेज़ रफ्तार लारी मजदूरों के एक ग्रुप में जा घुसी, जिसके सबब 6 ख़वातीन मजदूरों की मौत हो गई। काकीनाड़ा रूरल मंडल के कवूरू पुल के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब काम की जगह जाने के लिए मजदूर सड़क पार कर रहे थे। 4 ख़वातीन के जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर ने काकीनाडा के अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करनी होंगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उसे ये फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। वजारत दाखिला ने त्रिपुरा में नज्म व जब्त के फ्रेमवर्क को मजबूत करने की गरज से एक अहम कदम उठाते हुए एक इजाफी भारतीय रिजर्व बटालियन को सरकारी तौर पर मंजूरी दी है। मरकज ने इसके कायम के लिए 50 करोड़ और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए तक की माली इमदाद को मंजूरी दी है। भारत की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो से फेई और नूरजीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। 2019 और 2024 में कामयाबी के बाद भारत की इस जोड़ी का यह इस सीजन का पहला फाइनल और टूर्नामेंट का तीसरा फाइनल है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के अपने हममनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात पात के सर्टिफिकेट की फिर से जाँच के अहकाम जारी किए हैं। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की 2 सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart Rob Jessen and call on King William Alexander and Queen Maxima today. Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade. Army Chief General Upendra Dwivedi warns Pakistan against harboring terrorists and operating against India. West Bengal government orders re-verification of caste certificates issued since 2011. CBSE announces a 2-stage re-evaluation process of answer sheets for class 12 students. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Thailand Open after a thrilling victory over Malaysian pair in the semi-finals. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on Their Majesties King William Alexander and Queen Maxima this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi
1: Modi. In a social media post, Mr. Modi said the welcome was remarkable as it included a dance performance covering Kathak, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam, and also included a Garba performance. The Prime Minister is addressing the Indian community and will interact with leading business leaders from the Netherlands. The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. We now go live to The Hague in the Netherlands, where the Prime Minister is addressing the Indian community.
3: Aaj ka din hai. Koti koti Bharatvasiyon ka vishwas mujhe na rukne deta hai aur na thakne deta hai. ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है. साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया. आप ही मेरा परिवार बन गया. स्वर्ग से समष्टि की ओर चल पड़ा. अहम से वयम का रास्ता चुन लिया. और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया. आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया.
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The focus is squarely on the robust economic engine driving this partnership. With bilateral trade reaching record highs, Swedish industrial giants are not just observing the Indian market, they are thriving on it. A report.
4: Several reforms brought by the government in the last 12 years are being reflected not just among the thriving Indian businesses but also with the success and satisfaction of the international investors. During a talk with Akashvani, Shri Kamal Bali, Managing Director of Volvo India, explained how the reforms of the last decade have transformed the business landscape for international investors.
5: Things like Make in India, the PLI scheme, the GST reforms, I mean initial challenges, all these reforms, whenever anything changes, you have to go through a change mechanism. But I think today those things are really, really bearing fruit, and we can clearly see that the level of, and this is manifesting itself in the satisfaction level which we conduct among Swedish companies. So it's very, very clearly big, big benefit, and therefore the forthcoming visit of the Prime Minister is going to further cement the ties between Sweden and India, and I think it's a great opportunity for both countries.
4: It may be noted that Prime Minister Narendra Modi during his visit to Sweden will hold bilateral talks with PM Christensen to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade. They will also discuss on collaboration in green transition, AI, emerging technology, startup, resilient supply chain, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two Prime Minister will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Sakshi Singh, Akashvani News, Gothenburg, Sweden.
1: Indian Army Chief General Upendra Dwivedi said today that if Pakistan continues to harbour terrorists and operate against India, then they have to decide if they want to be part of geography or history or not. General Dwivedi's remarks at the event, Sena Samvad in New Delhi, came days after the country and the Indian military marked the first anniversary of Operation Sindoor.
6: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbour terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
1: Indian agencies have achieved the first ever seizure of a Captagon drug worth 182 crore rupees through Operation Rage Pill. In a social media post, Home Minister Amit Shah shared this information and said that the government is resolved for a drug-free India. He said that the busting of the drug consignment destined for the West Asia and the arrest of a foreign national stand

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: Yeah.
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने

0: और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
0: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Nimichutsut Nistan Pechadu, Kasata, Nistan Skarmangatuan Tupa, Ladar Seluric Sanchez Lapulin. In a Thomas Sanskula, Sonamandus Salgani, Junglu, Sanatat.

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कसता टशी वंग्यालता संस्थान गेचिसल कने जुंगलुरिक सनाचा

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Osteo susiju steo na ta te toga dak sanga ta samu sanga la tengi ta gajung nang culture minister tena zola nga ta UT administration judges tena zola su sui ka chala za teo na te changma la Lada Buddhist Association Gunpa Association Jor Sok School la ying takpa ni tukje chen EU nga ta mima skap salche su piale tumba shakya tupi relics po ke tena nga taksa ngira molkan nang jin man historical ma nga ta Lord Buddha is a historical figure. Yes. So, faith is a historical basis. So, I have a history. William Pepe is a British archaeologist. William Pepe identifies as a Kapil Vastu. He is a Buddha relic. ते वोस पसंते तेनाने काने में कपिल वस्तु तल थो वोस समते खोते वो जगह वो आइडेंटिफाई चोसते तेने एक्सकेवेशन चुआ नंग्यां पोते नान स्तूपाज भी हों उसके अगले ताते होते तू से कपिल वस्तु उनके अगले लेकिन काजा ने खों ते एक्सकेवेशन बुझात ते जार ने ते वा पीपर आवाज है क्या दांग दिरिया तेरना वा सिद्धार्थ नगर जैन और यूपी ना युते नगर दक्षाई नो मिक्सल चुकते गताएं खास कजो बोध गया नालंदा जैसे जो खुन्द मानो पे इन्ना लेकिन पीपर आवा आइडेंटिफाई सोंस है नगले तेने खून ते रेलिक्स पो खेते नंग रेलिक्स पो नंग यंपो ता जैसे ना स्तंभा सक्या तुबा ता ग्यापे कुछ को तेने चिन्ना ते तुसे ग्यापो झामे कोहा रुक्ती है जस पसंले तेने कौन रेलिक्स को नहीं आपो अंगतांगन में ग्यापो निशाचे योमुल तासेर मुझे तेने चुरु मुटे जस ओस्ते जुक माने प्रेशर स्टोन्स मांपो नहीं आपो रेलिक्स पो थोका ख्याल है तार रेलिक्स पो कजु आइडेंटिफाई सों क्या करना तेने कास्केट बिंक करते नाल कास्केट जिना जो की जमा चो छुन जी लुमजे चो शे बिकाले छुन दिक दुआ जांसते नो तें ते खातो ब्राह्मी जे कन स्कात पे कते जने दुलत करले ते स्कात पे ना डिस जते दुक ते वो गाता आइडेंटिफाई चो जिस कास्मो माने मानो तो न तक पते कते बिना डिस जोले ही होता लोर बुदे रिंगशेल जुक्सते इन जते सों पसंद वैसे रिंगशेल बुकोरांग गाता तास तो बे रिंगशेल बो स्कूई रिंगशेल जते तस्पेना बोन्स मतलब स्क्रूस से नोले चेम्स से नोले उषा नो ते उन्हें नोले तेना सोला ता नम्जे रिंशेल योहात कर लोले रम्जे रिंशेल गुन तेना सोला लुंगजेत काउन इस्तेमाल जात तुम्बा कोला जात का नम्स जात का गुनांग ते वां रेलिक्स गुरन ओपाले ता लामा तुम्बा गुन ता गोंपा जोगा नियम पो ता कौन बॉडी ना नियम पो कौन उते इस्तेमाल जात का गुना छा क्या ले तें सुंपा वो करते ना रेलिक्स वो मताए मेमोरियल स्पेन ना जुआ नो छोरतें जहाँ नो ले ते छोरतें गुण ना ते ना मताए जुकान बांग वो ते जो थेरु वाले सुंपा विलियम पेपे एक्सकैवेशन बेना 1889 नो ले कौन ते थोपकन बुखों फेत बुखरां यूके का तो ले फेत बो इंडियन म्यूजियम कोलकाता पुतो कोलकाता सोमपासा इंडियन म्यूजियम कोलकाता युतकन रेलिक्स पो दक्षा का निकारु फेफ्टेन रियल है आ फेत पुखे यूके अकल क्या खोरां खंपा जुनां करु युलले ते वो लो ज्ञान अंग निशुर सब्दु निस्तिंग ने ननिंग यानी कि 2025 ना लोग से क्या करला फेफ्टुप तेनो ते वो कजु संक्या जनाले खोए ताई खोरां प्राइवेट प्रॉपर्टी सो सिग्यूर छात क्या पाले यूके नेशनल म्यूजियम वो गवर्नमेंट एस आई टी नो आओ खुरा सौ पसंद खोए तो बहुत ही चीज सोला हांगकॉन्ग ओ गुट कुनी ले ऑक्शन चो चुच ऑक्शन जना गता है नीलाम था चुच सवाल तेने पे नहीं मांगो तब चे रेवाई काल ते गवर्नमेंट ना पता सौंते गवर्नमेंट ने तुरंत इंटरव्यून चोसते ले ग्यारह जुई कल्चर मिनिस्टर गुते तेने पंजुन स्पेरा मांगो सौंते पारवेना जुक पे का तेने
1: डिप्लोमेटिक वे
0: का अजुक जाते तेने तेना गताई
1: गोदरेज
0: एग्जैक्टली गोदरेज नंगयांपो गवर्नमेंट कल्चर मिनिस्ट्री टाइप जाते लोग से जुंग यंग क्या ख्याल है ताते वो तक संगता गवर्नमेंट यंग एसेट्स को तेनो और सोंग पस

0: दाव संगी चरंग है अलका याग्निक तंग उदित नारायण यूस्को ने हमारा दिल आपके पास है फिल्म लु वो सनाजाज फिल्म लु टिक्र में ना कसता आशा भोसले तंग उदित नारायण यूस्को ने प्यार तो होना ही था ये फिल्म लु वो सनाजाज लूर सो मजतकन समीर यंग लुयंग श्रिकन जतिन ललित
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

gas tanga je thore se digrim tang pes kor kun juna digrim tang pe gozuk pe khas nga to chu to tun tang skarma sum chu sok niska otcher tun tang skarma sum chu sop tun khanga je digrim nis kor kun dun tang skarma jip chu jak nisa kha tat panang je digrim sanchela phulen e digrim na nga tashi dorje pulkani sungur एस एस स्टीफन तंग ठोपागने फुलकाने गुरमा यहाँ तत्पना जेनेटिक रिमेस्टिंग जुग पे खा यहाँ चंद पालडुन तंग ठोपागने फुलकाने छोसलू संचला फुलिन थोड़े स्नातो को छुतोत क्या तंग फेदे खा जुंगलूरी एक संचला फुलिन गुई खा लदाख सेना नसुल गुतंग स्कर्माश ने का छपे दिलस ने स्कोला नसुल गुतंग स्कर्माश जुई का नंगचंग सफे डिग्रिम सनचा दिन ए डिग्रिम ना खाकनेन कनगुन ngawang tampel sonamwang chuk dechen yang rul chujin palmutang dechen angmogun tigrim tia chatkan skujabs rinchen namgel थोड़े स्नातो को छुतोत को तंग फेदका फिल्म मिलोरे एक संचला फुलिन को तंग स्कर्मा जिप जंगे का जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चिंता जत करने डिग्रिम जय के बैंक डायरी संचला फुलिन थोड़े स्नातो को छुतोत अश्चिका ठुगुनी फे डिग्रिम ठुगिश की साल संचला फुलिन ये डिग्रिम ना खाकने ना जत कन गुन अस्तांदिन नाम साल कुंजुंग अस्तांदिन जिगमेल लो साल अस्तांदिन नोरगेल अस्तांदिन नाम साल अस्तांदिन नोर्डन स्टैंडिन छोस्तार स्टैंडिन देसाल स्टैंडिन ईशे स्टैंडिन नोरियांग तंग स्टैंडिन कुंजस नक्सलगुन डिग्रिम फुलकन स्टैंडिन मुटुप यांग डिग्रिम कोटिक जातखन छिरिंग छोरल थोरस गातो को छुतो छुतांग पेदका एफएम गोर दिल्ली डिग्रिम गुन संजेला पुलिन निमे छुतो चुकनिस काफिल मिलोरे चुकनिस तंग पेदका सुनला लुपचांग वांगटक यांग टेस्टिंग ने छवांग नुरबुदांग टपागुनि सलकने जुंगलोरे एक सना जातेन थोरस निमे छुतो चिकतांग स्कर्मा शिखा मागमी खतोंग ने फेडिग्रिम ना फिल्म मिलोरे एक संचला पुलिन निस्तांग फेदे खा कुंजस टुलमा तंग टपागुन सालकाने जुंगलोरे एक संचला फोलेन यांग आजे थोड़े से डिग्रिम तंग पेस्टिंग जुग पे खा निमी छुसोत निस्तांग स्कर्मा अब चुंगा खा लदाख सनाना सुल सनाता देन।

0: ngasya akashwani le ne shin chik tangin phito go chu so tuk cha tuk kasata akashwani dilli ne smol la hindi yang testing ne ang rezina na sul sanacha
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora.
2: Netherlands ke samaj aur yahan ki economy mein जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
3: Last night, when the Prime Minister reached the Netherlands, he was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The Economic Offences Wing, EOW, of Delhi Police has busted a goods and services tax, GST fraud cartel, arresting six persons. Additional Commissioner in EOW, Ravi Kumar Singh, said in a press conference that the accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He informed that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The Additional Commissioner noted that during the investigation, around 51 lakh rupees cash, 15 mobile phones, 2 cars, fake invoices and SIM cards were reported. The West Bengal government has moved to withdraw the state's ongoing case in the Supreme Court regarding OBC reservation. On Thursday, government lawyer Kunal Memani wrote to the Supreme Court registrar requesting an urgent hearing to formally withdraw the matter. On the 22nd of May 2024, the Calcutta High Court struck down the OBC list prepared by the TMC government and ordered a fresh list to be created. The then state government appealed against that verdict in the Supreme Court, where the case is currently being heard by a bench headed by the Chief Justice of India. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET-UG 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandhare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. The CBI said she was involved in the NEET-UG 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said the accused had complete access to the botany and zoology question papers. So far, 9 accused have been arrested in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune and Ahilyanagar. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number of out-of-school children in the country, especially in the 14 to 18-year age group. A high-level meeting chaired by School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar discussed the issue and reviewed the implementation strategy for a proposed new initiative by the National Institute of Open Schooling. During the meeting, Mr. Kumar said, according to available data, out of every 100 children entering class 1, only 62 reach class 12. He noted that more than 2 crore children in the 14 to 18 years age group are currently out of school. The government has debunked a video circulating on social media claiming that petrol supplied by Indian petroleum companies to Bhutan is being sold there at a significantly lower price than in India. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said the video is old and is being shared out of context to mislead.

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस मन पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौजी भाइयों, अपने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत, तो आइए सुनते हैं प्लेयर्स फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल को। गीतकार है आशीष पंडित और संगीतकार है प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे शान सुनिधि और के कोरेस फिल्म से। फौजी भाइयों की लग लगी हमने लिया है, सिलसिला है प्यार का इस फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार।

अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल को चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से। फौजी भाइयों के लिए अगला गीत हमने लिया है सुनिधि चौहान की आवाज़ में चमेली फिल्म से। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीतकार है संदेश संध्या।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान को चमेली फिल्म से। इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: इस मौके पर अपने ख्याल का इजहार करते हुए अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन उल हक चिश्ती ने लोगों से तलकीन की कि वो 100 रोजा नशा मुक्त अभियान को कामयाब बनाए और माहौलियात के तहफ्फुज में अपना रोल अदा करें। इधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया है कि इंतजाम की जानिब से शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कश्मीर सूबे में खेल सरगर्मियों पर खास तवज्जो दी गई। ये बात काबिल जिक्र है कि अभियान के तहत अब तक 6000 से ज्यादा खेल मुकाबले मुनाकद किए गए जिनमें तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने शिरकत की। वजीर आला मुर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार ने इस्तेमाल शुदा पानी को मोस्तर अंदाज में ठिकाने लगाने के खातिर बारामूला जिले के लिए 37 करोड़ 96 लाख रुपए और राजौरी जिले के लिए 34 करोड़ 43 लाख रुपए लागत वाले मंसूबों को मंजूरी दी है। इन मंसूबों का मकसद सफाई सुथराई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और गंदे पानी से मुतलिक मसाइल का मोस्तर हल निकालना है। सरकार ने जल शक्ति महकमे में J&K इंजीनियरिंग गैजेटेड सर्विस की तरतीबी नौ को भी मंजूरी दी है। वजीर आला मुर अब्दुल्ला ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर राजौरी की नौजवान बॉक्सर मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीराला ने लिखा है कि मोहम्मद यासिर ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। नायब वजीराला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू जिले के इखनौर का दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने तालीम और सेहत शोबों के प्रोजेक्टों पर खसूसी तवज्जो देने और उन्हें वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की अफसरों को हिदायत दी। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि हुकूमत तालीम के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की वादाबंद है। कुलगाम के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं।
1: कुछ तो कमी है, वो रीजन ये है कि 19 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुए है, सारे पोस्ट जो है वो सीज किए गए हैं। अब हमने कोशिश की थी कि हम इनको फ्रीज करवा देंगे ताकि कुछ रिक्रूटमेंट हो, लेकिन कहीं पे हमारी प्रॉब्लम ये है जहां आपको 2 टीचर चाहिए वहां आपके पास 10 है, उसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। हम पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं इसमें और मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी है कि जहाँ जहाँ रेशनलाइजेशन की जरूरत हो वहाँ आप कर लीजिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर लीजिए। जहाँ दूर दराज में आपके पास 200 बच्चे हैं वहाँ आपके पास कम टीचर है, जहाँ सिटी में आपके पास 15 बच्चे हैं वहाँ 100 के करीब टीचर है, ये तो ज्यादती है, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा जैसे हम पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं।
0: दरियासना वजीर मौसुफा ने नीट पेपर के लीक होने को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए तालिबे इल्म के साथ नाइंसाफी करार दिया।
2: जो नीट का मसला हुआ है मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है। जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं वो फिर उनको यकीन होता है कि हमने एग्जाम दे दिया तो अब हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन रातों रात 30 लाख बच्चे उनको पता चलता है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से इस पे जो है गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को बहुत सीरियस स्टेप उठाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हर साल हमें यही सुनने को मिलता है, अगर 2 साल में नहीं तो 3 साल में एक बार हम सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। और आप खुद अंदाजा लगा, ये जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे काबिल होते हैं, जहीन होते हैं, उनके ऊपर क्या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके माँ बाप परेशान होते हैं, ये सब चीज जो है इसको वंस फॉर ऑल जो है रिजॉल्व करना चाहिए।
0: ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने लोगों को ट्रांसपोर्ट के रिवायती और ऐसे जराये इस्तेमाल करने की ताकीद की है जिनसे तवानाई की बचत यकीनी बन जाए। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया की सूरत हाल आलमी मामलात पर असरअंदाज हो रहे हैं।
3: हम चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करें और इन लोगों को रोजगार दें। जिस तरह पहले भी ये क्राइसिस आया, जियोपॉलिटिकल हालात जो है वो बता रहे हैं कि हर चीज का असर पड़ेगा, जो अमेरिका में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उसका असर होगा। ये आपको ट्रेडिशनल चीजों पे आना है, जियोपॉलिटिकल हालात जो है वो बता रहे हैं कि कोई देश के हालात अच्छे नहीं। तो हम दुआ करेंगे, एक मैसेजिंग थी, दोबारा से आपको इलेक्ट्रिक चीजों में आना है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिक्शा है, टांगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, दैट शर्म किसी चीज की नहीं।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज अमन अमान के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने का बैन अक्वामी दिन है। आज के दिन आलमी अमन को तकफियत बख्शने में इंफरादी और इज्तमाही कोशिशों को उजागर किया जाता है। इस दिन की मुनासबत से डोगरी जबान के मारूफ अदीब पद्मश्री प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: अगर हमने ह्यूमैनिटी को बचाना है जमीन पर तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ शांति, प्यार, मोहब्बत के साथ रहें। इंसान इंसान भी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ भी, एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के साथ। हर चीज के ऊपर एक डिवीजन बन गई, रिलीजन के नाम के ऊपर डिवाइड, हम और आप, हम और वो, मुल्क के ऊपर डिवाइड के हमारा मुल्क और आपका मुल्क।

0: दुनिया में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, मेरा मतलब है पॉलिटिकल ग्रुप जो दुनिया में बने हुए हैं, इस जमीन को जो हमें कुदरत की तरफ से मिली है उसको हमने लड़ाई झगड़े का अड्डा बना दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के जमाने में हम सबको इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे का साथ शांति के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रहना है अगर हमने जिंदा रहना है, अगर हम चाहते हैं कि इंसान बचे रहे।
1: पद्मश्री प्रोफेसर शफी शोक के तासुरात।
2: आज की दुनिया जो बहुत ज्यादा पीछीदा जिंदगी में गिरफ्तार है वो सारे और पॉलिटिकल मफादात के लिए बिकी हुई है, मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ यकजहतियों में, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि इक्तिसादी जिंदगी हमारी बहुत पीछीदा हो गई है। वरना ये आलम इंसानियत की हकीकत है कि अजल से ही रंग, नस्ल और एतिकाद की बुनियाद पर तकसीम हुए हैं। आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा आपस में हम इक्तिसादी मुफाहमत और एक दूसरे पर मुनहसर होने से एक दूसरे पर एतबार करके आगे बढ़े तो इससे शायद इस दुनिया में अमन और शांति इस्तेहकामत आ जाएगी, पूरी दुनिया एक हो सकती है और अमन की राहें खुल सकती हैं।
1: आज ही रोशनी का बैन अक्वामी दिन भी मनाया जा रहा है। ये दिन 1960 में एक मारूफ माहिर तबियात और इंजीनियर थियोडोर माइमन की तरफ से पहली कामयाब लेजर सर्जरी की याद में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के जेर एहतमाम हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से यूपीएससी और जेकेपीएससी इम्तहान की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का अमल जारी है। इस बारे में कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: मैथ का जो खर्चा है वो बच्चों को बर्दाश्त करना है, और मिनिमम जो फी हम रखते हैं मेंटेनेंस फी रखते हैं 1200 के करीब, तो जो बच्चे AY हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। इसमें खाली हम मेंटर रखते हैं जो इन्हें गाइड करते हैं, बच्चे खुद ही पढ़ते हैं लाइब्रेरी रीडिंग रूम में बैठ के, और हम एग्जाम लेते हैं वीकली या दो हफ्तों के बाद या मंथली हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं और हमारा मेंटर रहते हैं।
1: जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल जारी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
4: मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा रहती हैं, जैसे इससे प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसमें ग्रीवेंसेस रहती है, तो हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया है इसमें, तो उसमें एक टिकटिंग का सिस्टम है, एक टिकट जनरेट होता है स्टूडेंट के लिए, तो वो टिकट बैक एंड पे उसका रेजोल्यूशन होगा और उसका क्लोजर होगा, तो स्टूडेंट अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, उनको एक टिकट नंबर मिलेगा, फिर उसका रेजोल्यूशन उनको मिलेगा, वो सारा सिस्टम में इनबिल्ट है। और एक और बात है कि स्टूडेंट को अगर कोई भी चैलेंज आता है वो नियर बाय कॉलेज में जाए, किसी भी DTP सेंटर में ना जाए, नियर बाय कॉलेज में जाए, वहां से उसको फैसिलिटेशन होगी और उसको बताया जाएगा कि क्या उसको करना है।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर के बागे अली मर्दान खान कैंपस में FICCI की जम्मू कश्मीर शाख और KDU हॉस्टल के मुश्तरक एहतमाम से दस्तकारों बुनकरों के लिए आंखों के अमराज की तशखीस का एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्द हुआ। ये कैंप FICCI की चेयरपर्सन वर्षा बंसल, डायरेक्टर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट कश्मीर मुसरत इस्लाम और IICT के डायरेक्टर जुबैर मीर की निगरानी में मुनक्द हुआ। कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के एहतमाम से कल श्रीनगर में द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से मुनक्द हुए 3 रोजा प्रोग्राम के दूसरे रोज आज भी मुकर्ररीन ने कश्मीर की वसी तारीख पर मकाले पड़े। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने भगवती नगर जम्मू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मुनाकद तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि नजरियाती बुनियाद और तंजीमी कुवत बीजेपी के सफर की कलीद रही है। वर्कशॉप से पार्टी के दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में आज बड़गाम में पार्टी का कन्वेंशन मुनाकद हुआ, जिसमें तंजीमी सरगर्मियों और अवामी मुतालबात मसाइल का जायजा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को नशीली एशिया के इस्तेमाल से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इस मामले को सियासी रंग दे रही हैं।
5: जब गवर्नर्स रूल था तब जब पॉलिसी बनी थी तब तो ये पीछे नहीं थे। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज आप लोगों से वादा करूंगा कि जब इसका बैन लगेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लगाएगी, और हम समझते हैं लोगों का सेंटिमेंट क्या है, और खासकर कश्मीर में लोग चाहते हैं कि इस पे कोई ना तो कोई कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह ये जो उमर अब्दुल्ला साहब की जो ये जो कैबिनेट है और गवर्नमेंट है इस पे जरूर नजरसानी करके जो बेहतर करना हो वो जरूर करें। माहौल

0: dakseng jerang la dak se se se yang sik jemen nga lama tangyal pe phepranga gun chana cha chnga ji aka shwani le ne shun chik tang chane chu chot kya tang skarma jip chu janga chadu kasata ka shwani dilli ne samachar sandhya news set 9 yang urdina na sul chana cha
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय

0: को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: sector equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment, which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A joint statement said through this partnership, ASML will enable the establishment and successful ramp of Tata Electronics' upcoming 300mm semiconductor fab in Dholera, Gujarat. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. A Delhi court today sent the alleged kingpin in the NET paper leak case, P.V. Kulkarni, and another accused, Manisha Vaghmare, to CBI custody for 10 days. Special CBI Judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the duo needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. During the proceedings, the CBI said Kulkarni was a subject expert and had been associated with setting the 2026 NEET UG question paper. The Economic Offences Wing EOW of the Delhi Police has busted a Goods and Services Tax GST fraud cartel, arresting six persons. Additional Commissioner in EOW Ravi Kumar Singh said in a press conference that the accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He informed that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has made the study of three languages compulsory for students from class 9th beginning from the 1st of July this year. In a statement, the board said at least two of the three languages must be native Indian languages in line with the National Education Policy 2020 and the National Curriculum Framework for School Education 2023. CBSE has clarified that there will be no board examination for the third language R3 in class 10th, adding that all assessments for R3 will be entirely school-based and internal. The board said the performance of students in R3 will be duly reflected in the CBSE certificate. The Department of School Education and Literacy today convened a meeting to deliberate upon the issue of out-of-school children, particularly in the 14 to 18-year age group, and to discuss the implementation strategy for the proposed new National Institute of Open Schooling initiative. More from our correspondent.
1: During the meeting, Secretary of the Department of School Education and Literacy, Sanjeev Kumar, highlighted the serious concern of school dropouts and stated that as per available data, out of every 100 children entering class 1, only 62 reach class 12. He further noted that according to the latest periodic labor force survey estimates, over 2 crore children in the 14 to 18 age group are currently out of school. Mr. Kumar observed that economic compulsions, domestic responsibilities and livelihood-related challenges are among the key factors contributing to children remaining outside the school system. Stressing the need for urgent intervention, Mr. Kumar emphasized that every child should have access to education, at least up to the secondary and senior secondary levels, along with employable skills aligned with local economic opportunities. The Ministry of Education said that the meeting concluded with a collective resolve to ensure that no child remains outside the education system. Shiva Mishra for Akashvani News, Delhi.
0: India has rejected the latest award issued by the so-called Court of Arbitration on the Indus Waters Treaty dispute with Pakistan. Ministry of External Affairs spokesperson Ranthi Jaiswal said India does not recognize the court and considers it to be illegally constituted. He said any decision or award issued by the court is null and void. The spokesperson said the court has issued a supplementary award related to maximum pondage under the Indus Waters Treaty. However, India has firmly rejected both the latest ruling and all previous pronouncements by the arbitration body. Mr. Jaiswal also said India's decision to keep the Indus Waters Treaty in abeyance remains unchanged. The Indus Waters Treaty was signed between India and Pakistan on September 1960, governing the sharing and use of waters of the Indus River system. India had placed the treaty in abeyance following the Pahalgam terror attack last year. Within days of levying high customs duty on precious metals, the government today imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. The goods under restricted category need government license for imports. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall in Andaman and Nicobar Islands, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. Heavy rain is also likely in Keralam, Lakshadweep, Tamil Nadu, Karnataka and parts of the northeast. Thunderstorms with lightning and gusty winds are expected over several states including Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, Himachal Pradesh and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. The IMD has also predicted heat wave conditions in parts of Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Fishermen have been advised to avoid venturing into the South Bay of Bengal, Andaman Sea and adjoining coastal areas due to squally winds till Monday. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals. In the women's 77-kilogram category, Sanjana lifted 96 kilograms in the snatch, 124 kilograms in the clean and jerk, and a total of 220 kilograms to claim 3 bronze medals. In the Thailand Open Badminton, the Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Sei Fei and Noor Izzuddin in the semi-final in Bangkok today. The Indian pair won 19-21, 22-20, 21-16 in an 82-minute match to reach their first final of the season. In the final clash, the Indian duo will take on the Indonesian pair of Leo Roli Carnando and Daniel Martin. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders were 240 for 2 in 19.2 overs against Gujarat Titans at Eden Gardens when reports last came in. Earlier, Gujarat Titans won the toss and opted to field. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India and the Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEAT paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of 3 languages compulsory for class 9th and 10th. And India Sanjana wins 3 bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا. ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی تحویل میں بھیج دیا ہے. بھارت نے دریا سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے. سی بی ایس ای نے 9ویں اور 10ویں کلاس کے لیے 3 زبانوں کی پڑھائی کو لازمی بنا دیا ہے. اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلو گرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسی کے 3 تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز کئی طرح کے بحران اور قدرتی آفات کے تناظر میں عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی خاطر ایک بھروسے مند، شفاف اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تحت نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں ایک کمیونٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مختلف طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرتی رہی ہے، جس میں کووڈ 19 عالمی وبا، موجودہ مہازرائی اور توانائی کا بحران شامل ہیں۔
3: پہلے کورونا آیا، پھر یدھ ہونے شروع ہو گئے، اور اب آج کی انرجی کرائسس ہے۔ یہ دشک دنیا کے لیے آپداؤں کا دشک بن رہا ہے، ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ستھتیاں تیزی سے نہیں بدلی گئی تو بیتے انیک دشکوں کی اپلبدھیوں پر پانی پھر جائے گا۔ دنیا کی بہت بڑی آبادی پھر سے غریبی کے دلدل میں چلی جائے گی۔
2: وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ ان چیلنجوں سے اگر تیزی کے ساتھ نہ نمٹا گیا تو عالمی سطح پر ترقی کے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آبادی کا بڑا حصہ غربت میں چلا جائے گا۔ اقتصادی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے عالمی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈز مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے پر مشترکہ طور پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی رول پر بھی زور دیا اور ملک کو 21ویں صدی میں موقعوں کی سرزمین قرار دیا، جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار دونوں کو اہم مقام حاصل ہے۔
3: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے۔ بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے۔ بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے، اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے۔ میں نیدرلینڈز میں بھارتیہ سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا، آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں، اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا۔
2: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کی۔ جناب مودی نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان وسیع تر تعلقات استوار ہوں گے۔ حال ہی میں بھارت اور یورپ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا بھی ہوا ہے۔ الیکٹرانک سازو سامان تیار کرنے والی کمپنی ٹاٹا الیکٹرانک اور نیدرلینڈز سیمی کنڈکٹر سازو سامان تیار کرنے والی اہم کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں چپ تیار کرنے کے سلسلے میں اشتراک کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈز کے دورے کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ اے ایس ایم ایل لیتھوگرافی اکوپمنٹ کے زمرے میں اجارہ داری رکھتی ہے، جو چھوٹے سائز کے جدید سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اشتراک بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے، جن میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی سمیت اہم ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اے ایس ایم ایل کے صدر اور سی ای او کرسٹوفے فوکے نے کہا کہ بھارت کے تیزی سے وسعت پا رہے سیمی کنڈکٹر کے شعبے سے کئی اہم مواقع نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ خطے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے گجرات کے دورے کے دوران جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینئر عہدیداران کے ساتھ احمد آباد اور گاندھی نگر میں کئی میٹنگیں کیں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں اور ان سے وابستہ کام کاج کا جائزہ لیا۔ جنوب مغربی زون کے دفتر میں جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور پودے لگانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکیج گاندھی نگر کوریڈور کی جدید کاری اور گھاٹ لودیا، گوٹا، چاند لودیا، تھلتیج سمیت جھیلوں کے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے سلسلے میں عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دیں۔ جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے سے 9 منتخبہ 70 میونسپل کونسلروں سے بھی ملاقات کی۔ مہاراشٹر میں آج پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ایم نریش نے کہا ہے کہ آپریشن انتم پرہار کے نام سے نکسل مخالف مہم کے تحت 8 نکسلیوں کی گرفتاری اور 5 دیگر کے خود سپردگی کیے جانے کے بعد گڑھ چرولی ضلع سے نکسلیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے جناب نریش نے کہا کہ گرفتار کیے گئے نکسلیوں پر مجموعی طور پر 64 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے ان کے پاس سے ہتھیاروں سمیت 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारे के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिना उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रिहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज़ कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में 3री जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिली होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी CBSE सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। CBSE ने यह भी इतला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिबे इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खासतौर पर 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: स्कूली तालीम और खानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 बारहवीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरदस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इकतसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निज़ाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाज़ाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इकतसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताज़ा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम नहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे की उमूमी तशरीह के मामलों पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे को मुअत्तली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुहदे को मुअत्तली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि ये कदम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत उसके इक़्तिदारे आला के हुकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम माहे लक्षद्वीप जनूबी अंदरूनी कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पेचिंग के अपने दो दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जेफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम PB कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा बागमारी को 10 दिन के लिए CBI तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म
5: हुआ।